अंगेरा कागिता स्थाई को शिक्षा मुख डैडी मौन अलग लिया ने कागिता स्थाई को शिक्षा मुख स्टार 274 हाश टिकट नंबर सिक्स अगर वही तो सोए थाई को शिक्षा मुख अलग स्टार 274 हाश अगर चितन गुरे मोसेस नगान जोर चिके 563 रेमोन ने कान जोर चिके 1000 कंग्रेचुलेशन रेमोन स्टार 274 हाश मारा को कितने से सके चेंगिन वडडी मारा को कितने से सके चेंगिन अगर चामान बगीचे अरब रूटिच कोलमी थबंदा रेडियो यमुनो चामान पोलो अबरे चोवरी Ubure njobri baulo goyin subembe Star 274 hash daddy ticket number 6 aljinget ticket number 6